वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय। सो फ्रेंड्स एट दिस टाइम वी डू बेनेडिक्शंस। द पंडित्स विल कम अराउंड टू ऑफर वाटर्स ऑफ ब्लेसिंग्स अपॉन ऑल। कीप योर हैंड्स क्लास्प्ड, कीप प्रेइंग टू भगवान, एंड मे वी ऑल रिसीव द ब्लेसिंग्स ऑफ द डिवाइन लॉर्ड एंड मास्टर।

एक बाबर श्री वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र की जय, आर शक्ति जगदम्बा माता की जय, सर्व देवता सर्व देवी की जय, श्री सत्य सनातन धर्म की जय।

श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये ॐ श्रीदुर्गालक्ष्मी सरस्वतीभ्यो नमः।

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरा होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं ये चांद है या तुम्हारा कंगन सितारे हैं या तुम्हारा आंचल हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो कहीं नहीं हो मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो यहीं कहीं हो

कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। जगदम्बा माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सद्गुरु के दंडवत सकल पंच की जय। जय सीताराम। बैठ जाइए, हैव योर सीट्स प्लीज।

की जय। जग जननी दुर्गा माता की जय। माय डियर फ्रेंड्स, द मंत्र वी जस्ट चांटेड इज डेडिकेटेड टू द देवी, एंड द देवी इन टर्न ब्लेसेस अस टू बी करेजियस, टू बी हेल्थी, to be firm in our resolve, to find true happiness. We ask that, O Devi, may you shower your blessings upon each and every one of us.

सदा भवानी दाहिनी, मे भवानी मा, forever be to my right. सन्मुख रहे गणेश, मे लॉर्ड गणेश, forever be before me, clearing my path. पांच देव रक्षा करो. What does रक्षा mean? Protection.

भवानी माई सुमिरतो हे। ओ माता भवानी, आई मेडिटेट अपॉन यू, आई चैंट योर नेम सुमिरतो हे। माय डियर फ्रेंड्स, बाय चैंटिंग हर नेम सुमिरत ज्ञान बुद्धि देह मोहि, bestow upon me knowledge, bestow upon me wisdom, as I do your Sumiran, as I chant your name. नाम तुम्हारा हाय भवानी, अपने जन पर हो सहाई।